क्या नजर न मुझ पर डाली जाएगी, क्या नजर न मुझ पर डाली जाएगी, क्या मेरी फरियाद खाली जाएगी। अपने मिलने का पता कोई निशान, तो बता दे मुझे ऐ रब्बे जहां। अपने मिलने का पता कोई निशान, तो बता दे मुझको ऐ रब्बे जहां।

0: कोई हमारा नहीं है।
1: अल्लाह तबारक व तआला मस्ट गिव अस दैट कनेक्शन। सीसीज मुझको जीने का सहारा चाहिए, गम तुम्हारा दिल हमारा चाहिए। या अल्लाह इट मस्ट बी योर लव एंड इट मस्ट बी माय हार्ट। देन द कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड व्हाट एवर दे आर देन दे विल रिमेन आउटसाइड माय हार्ट। द पेन द सफरिंग एवरीथिंग कैन रिमेन बट बिकॉज ऑफ दिस मोहब्बत ऑफ योर्स इट विल बिकम ईजी। And then as I explained, Allah Ta'ala also has the power to remove those difficulties and problems because He is the one who has given it. For whatever reason, it could be in the form of azab and punishment, or it could be a test, and it could be for elevation of status and rank. But Allah Ta'ala will then remove it. Bahre